कर कृपा वसु मेरे हृदय होए सहाय आप। ये अरदास बन जाए पातशाह जी आप जी कृपा करो, आप जी का नाम साडे मन हिरदे विच सदा टिकिया रहे, तुहाडी याद एक तिल मात्र भी मन हिरदे तो दूर ना होवे, क्योंकि पई प्राप्त मानुक दिहुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बढ़िया। सतगुरु जी ने सानू ये वारी बख्शिश की है अमोलक मनुखा जीवन बख्श के, सतगुरु जी आप रहमत करन, क्योंकि मन को टिकाउणा बहुत औखा है, बहुत वड्डी खेड है। ये पातशाह जी आप कृपा करन फिर ये वस विच आउंदा है। प्यार नाल सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है, इनू प्यार नाल ही कहना है ता ही वस विच आ सकता है पातशाह जी। वस भी आना है नाम जप के। सो सतगुरु जी कृपा करन सानू समूह संगतां नू परिवारां नू नाम दियां दातां बख्शिश करके निवाजन, ता जो साडा जीवन सफल हो सके। भुल चुक दी खिमा बख्शना आप सारियां संगतां ने असीसां बख्शियां हन सेवा लई है सतगुरु जी ने आप कीर्तन दी। सो आप जी ने कल भी वध तों वध हाजरियां भरनियां, ये बेनती है होरना परिवारां नू भी लैके आउणा। जदों असीं जोड़दे हाँ किसी नू भी सतगुरु जी दे चरणां च लैके आउंदे हाँ, संगत करवाउंदे हाँ, उहदा फल सानू भी मिलदा है, सतगुरु जी दी बख्शिश हुंदी है। सो आप जी ने जरूर सिनेमर बेनतियां प्रमाण करनियां। स्टेज तों भी आप जी नित्ता प्रति सरवण करदे हो, नौ सुन रहे हो, आप जी ने जरूर हाजरियां भरनियां। साना भी सानू आप जी दे असीसां बख्शदे हो, होर सानू सतगुरु जी बख्शिश करके आप सेवा लेंदे हन। आओ भुल चुक दी खिमा प्यार दे नाल आनंद सहिज दा जाप करिए जी।

आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।